0: With this, we have come to the end of the current episode of Radio Sai Bhajan Classroom. If you have any queries or comments, as always, you can write to listener@radiosai.org. The audio engineers for this program are Sunil and Abhishek, and the background score was done by another alumnus from Chennai, T.S. Ramakrishnan. With heart full of gratitude and love, we offer this endeavor at his lotus feet.
1: You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on 30th June 2016 as part of Thursday Live from Prashantinilayam on Asia stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
2: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
3: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne sun 1984 ke August aur September mahino ke dauran Srimad Bhagavad Gita par 34 mahatvapurn pravachan pradan kiye. Ye pravachan Gita ke saar ko vivid saral udaharanon ke madhyam se निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 11 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
4: भूमिका। अपने इस अमृत तुल्य प्रवचन में भगवान बाबा अनेक आध्यात्मिक अंशों की सविस्तार से व्याख्या करते हैं। प्रथमतः स्वामी भय का उल्लेख करते हुए हमें भय की स्थिति से मुक्त होकर अभयता की स्थिति को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि जो आत्मिक दृष्टि को विकसित कर पाता है वही अभयता की स्थिति को पाता है। भगवान बाबा कहते हैं कि जब तक मनुष्य दैहिक एवं मानसिक दृष्टियों को महत्व देता रहता है वह ईश्वर की दृष्टि से वंचित ही रहता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने हेतु स्वामी श्रीमद् भागवत से गजेंद्र मोक्ष की घटना का उल्लेख करते हैं। इस घटना में निहित प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करते हुए स्वामी बताते हैं कि अहंकार पूर्ण मन ही मदमत्त हाथी है, ममत्व ही मगर है और संसार ही जल है तथा ईश्वरीय दृष्टि ही सुदर्शन है, जिसके पड़ते ही हाथी को मुक्ति प्राप्त हुई। स्वामी का संदेश है कि ईश्वरीय अनुग्रह को प्राप्त करना है तो भक्त की दृष्टि निरंतर ईश्वर पर ही होनी चाहिए। यही तथ्य श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को उपदेशित हुआ है।
5: नास्ति जागरतो भयम्। एवरु जाग्रततो उंटुंटारो, एवरु विषयमुलंदु विवेकमैनटुवंटि भावं कलिगि उंडुदो अट्टिवारिकि दुःखं वल्ल एट्टि भयम कूडनु उंडदु अनि।
4: अनुग्रह को प्राप्त करना है तो भक्त की दृष्टि निरंतर ईश्वर पर ही होनी चाहिए। यही तथ्य श्री कृष्ण के

आज मैं जो भी भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो सभी भजन मेरे पूज्य पिता पंडित कुमार गंधर्व द्वारा स्वरबद्ध किए गए हैं। अपनी सेवा

राजस्थान में एक मीराबाई के समकक्ष एक और बहुत महान कवियत्री हुई हैं, संत कवियत्री, जिनका नाम चंद्र सखी रहा है, उनका एक लोक भजन आपके सामने प्रस्तुत।